0: Alors, ton côté, mais tu sens ton Burkina Faso. Tu vas laisser un site à Jiba ou Moudla Wusro. Sampa me songle, le train libre en yèvre, mais il tire aussi de tièvre vim à Walatan de Vipinti à Soma.
1: Amba, le giga, la bousson son yuling.
2: Prior to 2015, Burkina Faso was renowned in Africa for its peaceful coexistence between Muslims and Christians. Today, however, the terrorism committed by extremist groups like Al-Qaeda and ISIS has led to one of the fastest growing displacement crises in the world, with over 2 million people forced from their homes. Anyone who does not follow the radical Islamist ideology is a potential victim. Although the circumstances are different, we hear similar stories from Asia, especially Pakistan, where the Christian minority experiences severe discrimination and persecution. Christians in Pakistan make up less than 2% of the country's over 200 million Muslims, and as a minority faith group, suffer accusations of blasphemy. For example, allegations of denigrating the Quran, which is punishable by death. The kidnapping and forced conversion of young Christian girls, as well as church attacks and almost daily discrimination. In this difficult context, we meet Imran, a catechist from Kushpur in the region of Punjab.
3: My name is Babu Imran Patras. I am a catechist. और मेरे वालिद जो हैं वो भी बाबूजी थे यानी कैटेकिस्ट थे और मेरी वालदा कैटेकिज्म की टीचर हैं इबादत में जाता था और चर्च की तैयारी जो है वो मैं खुद करता था तो मैंने इरादा किया कि मैं भी लोगों की कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करूंगा पाकिस्तान में मसीह होना जो है ये बहुत मुश्किल है आसान नहीं है हमारा जो पाकिस्तान में ज्यादातर जो कैटेकिस्ट खिदमत कर रहे हैं वो मजदूर तबका में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं भट्टा मजदूर लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं और पसे मांदा लोग हैं जिसमें खास तौर पे कर्ज जो है उन पे काफी है
4: बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन
3: फैमिलीज हैं हम उनकी खुशी में गम में शरीक होते हैं गॉस्पल खोलता हूं बाइबल सर्विस करता हूं उनके घरों में दुआ करता हूं बरकत के कलमात अदा करता हूं तो हम उनको निकाह के पाक सैक्रामेंट के लिए तैयार करते हैं और बच्चों को पाक शराकत के लिए तैयार किया जाता है और फादर जी अगर मौजूद नहीं है तो उनकी इजाजत के साथ कुछ सैक्रामेंट जो है वो अदा कर सकता है आपकी खिदमत की बदौलत कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से मैंने ट्रेनिंग हासिल की आप अपनी डोनेशन जो है वो जरूर भेजें मेरी आपसे अपील है ताकि आने वाली नौजवान नस्ल जो है वो भी कैटेकिस्ट बनकर खुदा के कलाम की खिदमत करे शुक्रिया
2: In light of this minority Christian population, bishops and priests rely heavily on the catechist. For this, good formation is key. It gives these men and women the tools to share the gospel, deepen the faith, and the courage to be missionaries. In his letter, Antiquum Ministerium, where he officially established the catechetical ministry, Pope Francis said catechists should be men and women of strong faith and maturity, people active in the community, welcoming, generous, and living in fraternity. They also need solid training in the Bible, theology, and pastoral care so they can clearly and effectively share the faith. We're now going to meet two such catechists, one from South Sudan and another from Uganda, who have taken Pope Francis's teaching